मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 29 तारीख है और दिन है सोमवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। अब से लेकर रात के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे सुमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री थामसरिंग, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंत्र के सहायक श्री अमल कुमार दास, मौनपोध घोषक है श्री सांगे टशी और मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका सांगे थामू। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

0: 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और

0: मतदाताओं की अदालत के निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा

0: दसवीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान

0: ध्यान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी दिल्ली से अंत प्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुनेंगे देवशीष दास गुप्ता से कबीर अमृत ध्वनि। तो पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे देवशीष दास गुप्ता से कबीर अमृतवाणी। इसी के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। श्रोताओं अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे संजय मर्फी और साथियों से चंद बुगुन गीत। तो पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे संजा मर्फ्यू और साथियों से चंद बुगुन गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इसमें आज आप सुनेंगे पीएम श्री जैन में तवांग के 9वीं कक्षा में पढ़ रही छात्र जॉयस चुंगरोजू से नशा मुक्त समाज की आवश्यकता विषय पर अपने विचार साझा करते हुए। तो पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: हर घर का चिराग ना बुझने पाए, हर घर का चिराग ना बुझने पाए, नशे की आग को हम जो बुझाए, छोड़ो नशे।

0: होश में आओ, जागो तुम। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी जोय शोंगरोजू, पीएम श्री जेनवी तवांग नवी की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय नशा मुक्त समाज की आवश्यकता पर है। नशा केवल एक व्यक्ति की बुरी आदत नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक बीमारी है जो धीरे धीरे व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को खोखला कर देती है। शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स, ये सभी नशे के रूप हैं जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। नशा सबसे पहले व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। नशे की लत लगने के बाद व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना भूल जाता है। उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है और गंभीर बीमारियां उसे घेर लेती हैं। इतना ही नहीं, नशा मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसे खतरनाक परिणामों को भी जन्म देता है। यदि हम परिवार की बात करें तो नशे की वजह से परिवारों में कलह, गरीबी और हिंसा बढ़ती है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जिस घर में नशा होता है वहाँ शांति नहीं बल्कि डर और अशांति का माहौल होता है। समाज का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है, लेकिन आज का युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। गलत संगति, तनाव, दिखावा और सोशल प्रेशर के कारण युवा नशे को फैशन समझने लगे हैं। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यदि युवा ही कमजोर हो जाएंगे तो देश का भविष्य कैसा सुरक्षित रहेगा? नशा मुक्त समाज केवल सरकार या कानून से नहीं बन सकता, इसके लिए हम सबकी भागीदारी आवश्यक है। सबसे पहले हमें स्वयं नशे से दूर रहना होगा, अपने मित्रों और परिवारजनों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी अभियान चलाने होंगे। मीडिया और सामाजिक संस्थाओं को भी इसके दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। नशे में फंसे हुए छात्र छात्राएं अपने भविष्य को खतरे में डाल लेते हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें, स्वस्थ समाज का सपना मिलकर सच करें। धन्यवाद।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत सुनते हैं हीना फिल्म से, मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अगला गीत सुनते हैं। एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसूजा और सुजैन डीमेलो की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

अगला गीत सुनते हैं लेडीज वर्सेस रिकी भैल फिल्म से शिल्पा राव की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बैनी दयाल, नाजिया हसन और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अगले गीत सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म से सनम पुरी और नीति मोहन की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अगला गीत सुनते हैं टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अगला गीत सुनते हैं, ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी डेल और शेफ अली अल्वारेस की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अगला गीत सुनते हैं, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार और अमित अनीज ने और संगीत दिया है शरीफ दोषी और जावेद अहमद ने।

अगला गीत सुनते हैं फनी खान फिल्म से सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इशात कामिल ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

अगला गीत सुनते हैं फनी खान फिल्म से सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इशाद कामिल ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

अगला गीत सुनते हैं जवानी जानेमन फिल्म से यसीर देसाई की आवाज में। इस गीत को लिखा है देवशी खांडूरी ने और संगीत दिया है गौरव और रोशनी ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं, दे दे प्यार दे फिल्म से सुनिधि चौहान और नवराज हंस की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विपिन पटवा ने। We are controlling transmission.

दे दे प्यार दे फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो रहे हैं। श्रोताओं अब पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इसमें आज आप सुनेंगे श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से ख्याल। तो पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से ख्याल। इसी के साथ ही कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

वाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेगी वीरता पदक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी याचिका पर तत्कालीन सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बताया। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश होने की पूर्वानुमान किया है जारी। पुरुष क्रिकेट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 रन से हराया। ICC महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों केंद्र सशस्त्र

बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्र में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरियों को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित चुने हुए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्कालीन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और सिल नागू की बेंच ने याचिका की तत्कालिकता पर सवाल उठाते हुए निर्देश दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने की याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों के आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। महाराष्ट्र के परभूनी में एक कमान इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने युवा से नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनने को आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्य बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रॉन्ज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले 15 जून को रॉन्ज एवेन्यू कोर्ट में 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज तक बढ़ा दी थी। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट यूजी प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जांच कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्र को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। सीबीएसई ने कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के जिन छात्रों ने पहले ही 2 विदेशी भाषाएं चुन ली हैं, उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड ईएचआर मानक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के तत्वावधान

0: विकसित इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना, अंतर संचालनीयता को मजबूत करना और देश के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को तेजी से अपनाना है। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम स्वस्थ भारत और अधिक डिजिटल रूप में सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण विस्तार का उल्लेख किया और कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है। इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई है। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। यह प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 के माध्यम से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक और विनियमात्मक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियमकाय ढांचे को मजबूत करना है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की भी सलाह दी गई है। पुरुष क्रिकेट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ आयरलैंड ने 2 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अपने नाम कर ली। बेलफास्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए, जबकि जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट खाकर 153 रन ही बना सके। आयरलैंड के जय मुद्रा ने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कल रात ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल प्रेजेंट Gallantry Awards at the Second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer Gallantry Awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Forces and State Union Territory Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Forces and other security agencies. The awards reflects India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. Prime Minister Narendra Modi today visited offered prayers at Navsakti Vijayanagar Temple in Victoria, Seychelles, on the third day of his visit to the African country. He also met the members of the Indian diaspora there. Later, the Prime Minister paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park today. He has departed for India after concluding his successful three-day visit to Seychelles. The Central Board of Secondary Education today issued guidelines on the three language policy. In a statement, the board said that the current batch of class 10th will not have to follow the new language policy. It also said that for current batches studying in class 7th, 8th

Rang sim ne deba mutunu ya ya, orela.

0: intranetal caring. Su jut sakshuk onu miki sakti relationship intranetal caring.
1: Yes.
0: Ta onu nan diye ki yasega krik sakshuk e pe kerla sayi manumla.
1: Yes.
0: It duration chie onu ning am neka shikier go sunum me.
1: Yes.
0: Ke sakshuk hapto grow lu thi. It duration chie zizi care ya kosuchit each postnatal care.
1: Yes.
0: Spectrum chiti.
1: Less so, that was a rimpusum de mere. Ijapota doctor Sabnada hangi, antenatal care corrigiona, antenatal care chevenata, says Yakosreino.
0: Antenatal care che nata, nata, luka rasak truce, antenatal checkups karausumla.
1: Less.
0: Checkups in it, manga raya, chega check the other made checkups. Total checkups chit lit nisakche, run it little yaya.
1: Less.
0: Which of Linis Kujuk, legitchi di. Hapto nini chit hoti tiaya, which le juktachi, hapto haptoka, the pechuk tia rixam uchimda.
1: Leso.
0: Umpin chit, busy no ning tubrimununene, yuta yuta chit, to blit gayamente, raya NC, antenatal checkup yakosura imla.
1: Leso.
0: The it nasho chit, lesum magete nana chit, he.
1: Les.
0: Which you le lingal hala chit, he.
1: Les.
0: Which you shukta chit, he, the le nislala chim and get hala chit, he.
1: Leso.
0: इचुकता उचुकता छे 36 वीक्स नो तो छे बिकेरे नाना छे थी या तो ब्रित मिनिमम रल गोसो नाइम
1: लेस
0: ले ले रोम मते ना न्यू था छे तो ब्रित गया में
1: लेस
0: ना था छे फर्स्ट विजिट छे जी या को सुनो उन्हें ने प्रेगनेंसी छे दरका दरका का ओनु छा में नेगा है मर सुया या दरका का ट्यूब कह रहा तो को प्रीम में
1: लेस
0: उठ रसो ने छे कितना खेंचा रिस्क थिंग जो बात सी दुमदा
1: लेस
0: तो एक की नशो तैयार होती चेकअप या तो ने उन्हें छावो चित तंतन्या छा में छेरां छावो वो तो ये कंफर्म दी गई हमें
1: लेस
0: वो जो ताऊ एंटीनेटल चेकअप फर्स्ट विजिट चेने आम शिताऊ नाटपे कोला नो मुनु एक की शुद्धि दे नाटपे को ने ने लुस्का रसोचे दुगुरी में कोरी में इतना नो मुनु It screening degree जिम्दा
1: लेस
0: इट स्क्रीनिंग degree ये जो शुक ताऊ ले लंगलू का ताऊ थोड़ी रहा चेकअप या निंग अल्ट्रासाउंड निंग जेका या पुले इचे अनुचित दिव या सोधो मजोतो
1: लेस
0: ngari anomaly scan ye dum dai anomaly scan ye onu zega chang no muno itna ngam teri yup nom
1: yes
0: ichi shu ta visit ti kare yum dai che lenis lala chika ichi de onu diya so duin mozo duin ichu onu position ning ata nom lang china pina jaga che diya no nam muno nam
1: yes
0: terka ka ste nom lang pina jaga ka munu ya mura ya zugula ro dum
1: yes
0: ichi ngari placenta previa ngela उच्चे दे ब्लीडिंग योर गई चांस नो एनसी केयर उच्च स्पेक्ट्रम दे गांव ते ने लुका रसक छुड़ने जू मजद सकती छे अदा जेगा क्रू नो उच्च जू जोत ने जिका कॉम्प्लिकेशन मुनु मतो थी इट स्क्रीनिंग एक छितिम दे इंटरनेट केयर ने
1: ना उच्च होन मंजेक यार ये नवा ये ने मुनुमोर तमले खेने लोग नाक सब नौ ना उच्च होन देनो मतो थुंचिन ता नवा ये ने मुनुमोर साइंस उतुम यार ये के नवा ये ने मुनुमोर ता नाक पामना तुगा सब नौ निंग नाता ए मिन नाक तुगा सब नौ नजिक ता नाता बुझ बुझ उच्च सम देखिगा नंबर पादे तू तू चिपची पामना Chemaki Sumatula Manga Raiki Sunyo Tamzika Munumbur, Igata Tunjin Yazika Munumbur, Uchan Amji Munumbur, Manye Munumbur, that they know to be another science Yakege, Sandik Yakege, Tujan Toga Namda Yakege, Latinia, that they know Mashu Moto Tingata Shungi Zinando Yena, Injiki Kayana, Institutional Delivery Rangi, Itanando, Totana in Itando, Shungi Namina Itanando, that Onuji Chukta let up in a Legrangia, that Kiluk Duzotompole, Luchiuk, Pinon Duzotompole. Mankara injimijero to onye mena itanano me. Ijabota doctor sab mankara di rocha institutional delivery di yahu yina uki da kisang si sino nam uki panto si sino nam ijikorte nam inshu.
0: Government institutional delivery yako surang yaya promote zinge ya dungi ne delivery process chit kerzu jot sakshu pang pirit chit masang sakti.
1: Yes.
0: Kenza riski zidam da. Ije kerzu thodi jot sakshu terka ka onu mur mababu. Ojo onu mur mababu nene onu nyanga koula langre
1: yes
0: ojo onu nyanga koula langre ne hypoxia ngi dum
1: yes
0: onu pe jont mate ye the langre ye su ne pe ko chu nom lang sur onu shi tha chi ti ye muju dum la
1: yes
0: it muju a che onu janga tang bu sup tum to ya langre dum me
1: yes
0: pe che onu shi bina chinga ne nga ne phiki them dar dong pe chu it chi chinga chi de ka gri langre pe chu shuk te pe klo wa langre उन्तुन कॉम्प्लिकेशन लड़ा दो हो प्रॉब्लम में सर
1: लेसो
0: उत पीरियड सो खेंजा आमिशी ए रिस्की अनुशी ए रिस्की नो मिला
1: लेसो
0: इत की ता मन का हाँ रोत ऑब्जर्वेशन का दा सिस्टर नाइन ना डॉक्टर नाइन ना फिर कहाँ पर ऑब्जर्वेशन का उत प्रोसेस चित कहाँ प्रिक्ति ने ने आमिशी खेबर रशो चुक अनुशी खेबर रशो रहीम ला
1: लेसो
0: ना का दो ता चुक होम डिलीवरी

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। जरोखा में हम आपको अवगत कराते हैं हमारे केंद्र से आज एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम की जानकारियों से। तो चलिए पहले आपको अवगत कराते हैं आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज शाम 6:20 पर कार्यक्रम शिलनेरी में सुनिए गेलोंग जमा वांगचू और साथियों से शिलदिन चोरवा चुटरुक। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7:00। आज शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में सुनिए केवीके तवांग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्य पांडे के साथ शोषण वाटिका यानी न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पर हुई एक भेंटवार्ता। शाम 7:30 पर कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत में आनंद लीजिए रेफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का।

आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7:45 पर 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए लता मंगेशकर से एक देशभक्ति गीत। आज शाम 8 कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए कुछ पुराने फिल्मी नगमों का आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसार स्पोर्ट्स कैन आज शाम 8:30 पर तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 आज रात 9:00। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको अवगत कराते हैं कल यानी 30 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार के साथ। तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए महाबोधि स्कूल तेली तवांग जिले के छात्रों द्वारा पाली भाषा में एक भक्ति गीत कल दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत सुनिए भूपेन हजारिका से चंद असमिया आधुनिक गीत कल दोपहर 3:00। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात तत्पश्चात कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए डियर जिंदगी फिल्म से जसलीन रयाल और अमित त्रिवेदी। जब तक है जहां फिल्म से नीति मोहन चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई दिल धड़कने दो फिल्म से सुनिधि चौहान और हिचकी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाजों में चंद फिल्मी गीत। कल दोपहर 3:50 पर कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान अजीज कौर और तनिष्क बख्शी स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से विशाल ददलानी पायल देव किशोर कुमार और मरियन नोटबुक फिल्म से कमाल खान सत्यमेव जयते फिल्म से अतीफ असलम और तुलसी कुमार मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान जुग जुग जियो फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा भूत वन फिल्म से अखिल सचदेवा और मशील गुजराल और ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शिफाली अल्वरेस की आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागरंग में सुनिए पंडित उल्हास बापात से संतूर वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 4:45 पर। रोजाने की तरह मन पर कार्यक्रम नमथल लेरिम कल शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए श्री कुंज संघ की द्वारा दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। 5:35 पर साप्ताहिक कार्यक्रम तांगपोक समा में आनंद लीजिए चंद मोनपा गीतों का। लेरिम सेढ़ा शाम 6:00 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति गीतों का कार्यक्रम शिल्डन नेरी में सुनिए केलोंग जंपा वांगचू और साथियों से शिल्डन जरवा चुटु का शेष भाग कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7:00। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोमोसो डे में सुनिए जीयूपीएस खिमितंग के दूसरी कक्षा में पर रहे छात्र तिनजिन हाटन से एक कविता। कविता का शीर्षक है कलर्स।

तत्पश्चात कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आनंद लीजिए। साजन फिल्म से अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम।

साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक, और आखिरी गीत साजन फिल्म का एसवी बाला सुब्रमण्यम के आवाजों में। कल शाम 7:30 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। आकाशवाणी ईटानगर से अन्य प्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम क्वामे तराने में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत। कल शाम 8 कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सद

आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर, कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम क्वामे तराने में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत। कल शाम 8 कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन कल शाम 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 9 कल रात 9:00। कल रात्रि 9:16 पर आकाशवाणी तवांग के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसार किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मनपा में, कृपया हमारे साथ बने रहें।

마루 민자원 유지 민자원 나인자원 대단지니바라마네 징계란 돈서 마

साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों

0: Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle EV policy, set for a phased four-year rollout starting from the 1st of next month. The ambitious framework commits a massive fiscal outlay of 15,000 crore rupees to complete the transition, the national capital towards zero-emission transit by 31st March 2030. Iran and Oman have held the first meeting of the newly established Joint Hormuz Committee in Muscat. Iran's Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs, Kazem Gharibabadi, said the meeting focused on current developments in the Strait, the sovereign rights of the Gulf coastal states, and possible frameworks for its future administration. The discussions were held with Omani Minister of State for Foreign Affairs, Abdulaziz Al-Hinai, and follow an agreement reached last week between Tehran and Muscat to establish the joint committee. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. However, the men's team will have to finish as Asia's highest-ranked side in the ICC men's T20 rankings by the end of this year to secure direct qualification. The International Cricket Council today confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked the places in the women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympic Games. Cricket will return to the Olympic Games at Los Angeles 2028 after a gap of 128 years, with six teams each competing in the men's and the women's T20 events. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। इसमें आज आप सुनेंगे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्य पांडे के साथ पोषण वाटिका यानी न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पर हुई एक भेंटवार्ता। उनसे भेंट करता है सुश्री खांडू पेमा और सुश्री तिंजिन छुटन। तो पेश है कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। मैं हूं खांडू पेमा और मेरे साथ है मेरी सहपाठी मिस तेंजिन छोटन। हम दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय की चौथी सत्र के छात्र हैं। श्रोताओं, आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस डॉक्टर दिव्य पांडे जी को। तो डॉक्टर मैम, हम आपका हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं।
3: थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग यानी पोषण युक्त बागवानी के बारे में कि पोषण युक्त बागवानी क्या होता है और यह हमारे स्वस्थ व जीवन शैली के लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण युक्त बागवानी यानी न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग क्या होती है।
3: न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग जो है वो हमारा कि थ्रू आउट द ईयर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स ये सब कैसे बैलेंसिंग अमाउंट में आपको मिले वो होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि पोषण युक्त कैसे रहेगा। मीन्स जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाने में यूज कर रहे हैं वो मिक्स करके खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो हमारा पोषण बागवानी जो यूज करने का मकसद ये है।
2: जी मैम, तो अगला सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि आज के समय में पोषण युक्त बागवानी की क्या महत्व है।
3: पोषण युक्त बागवानी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो ये है कि आपको थ्रू आउट ईयर वेजिटेबल्स या जो भी फ्रूट्स का सेवन हम कर रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपके प्लेट में मिलता रहे पूरा साल, और जो भी आपका वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वो मिक्स वाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं उस पे ध्यान देना है हमें, और वो हमारे डाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल्स की वो 300 से 400 ग्राम पर डे हमारे डाइट में वेजिटेबल्स होना चाहिए। इसी के साथ हमारा फ्रूट्स भी 100 ग्राम पर डे हर दिन आपके डाइट में होना चाहिए। तो ये जो पोषण वाटिका आपका जो गवर्नमेंट का है न्यूट्रिशन किचन गार्डन उसमें हम फुलफिल कर पाते हैं जब इस तरह से गवर्नमेंट का जो स्कीम है इसको अच्छे से सुचारू रूप से करके ढंग से लगा के एक ही क्रॉप को बार बार रिपीट नहीं करना है इसमें।

0: और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को यूज़ करना है। तो ये सब करके हम पोषण बागवानी को बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि पोषण युक्त बागवानी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही हमारे पर्यावरण तथा हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत लाभदायक होती है मैम।
0: अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो पोषण बागवानी है वो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही हेल्दी है आपका, और इनकम जनरेशन का भी काम करता है, क्योंकि जो थ्रू आउट द ईयर जो सरप्लस वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है उसको हम मार्केट में ले जाके सेल करके भी एक अच्छा आमदनी का सोर्स है, हमारे लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं, और आर्थिक आपका जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा। आपका एक पोषित जो है किचन गार्डन, और आपका खुद का भी जो जिसके भी घर में इस तरह का न्यूट्रिशनल किचन गार्डन अगर है तो उनके घर में भी जल्दी कोई बीमार नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मिक्स करके खा रहे हैं, प्लस पर डे जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो इस नाते वो हेल्दी रहेंगे और ये अच्छा है।
1: जी मैम, तो जैसा कि हम कहते हैं कि घर में लगाई गई सब्जियां और जो फल है वह बाजार से खरीदी गई सब्जियों और फलों से कई बेहतर होते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण के मामले में घर की जो सब्जी या फल है वह बाजार की चीजों से कैसे बेहतर है मैम?
0: बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। जो घर में लगाई गई सब्जियां हैं उसमें हमने पौधों को टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, जो हमारे किचन के वेस्ट हैं वो पानी उसमें जाते हैं, प्लस जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं, उसका यूज करते हैं, तो मीन्स कि उसमें कोई भी केमिकल्स हमने यूज नहीं किए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है। लेकिन जब मार्केट से खरीदते हैं तो वो एक लार्ज कमर्शियल पैमाने पर बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उगाते हैं कमर्शियल लेवल पे, तो वो अपना बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं उसमें, तो उन एक फार्मर्स को बार बार समझाने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता रहता कि कितना प्रपोर्शन में हमें केमिकल यूज करना है, कितना अमाउंट में डालना है, एक पौधे को कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे लाइक टोमेटो में एंडोफिल का बहुत ज्यादा यूज है वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो बार बार जो है उनको अमाउंट नहीं पता है कि किस अमाउंट में डालना चाहिए एंडोफिल को, तो ये चीजें जो है उनको बाहर से जो ली गई से वेजिटेबल्स है उस पर डाउट रहता है कि उसमें जो है उनका जो प्रपोर्शन है फर्टिलाइजर्स यूज करने का वो ठीक नहीं होगा, वो हमारे लिए अनहेल्दी होंगे। लेकिन जो हम अपने किचन गार्डन में लगाएंगे, अपने खाने के लिए यूज करेंगे, उसमें जो है हम उस तरह के जो नेचुरल केमिकल है उसका यूज करेंगे, तो इस वजह से वो हेल्दी होते हैं।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि गांव या निम्न आय वाले परिवार यानी लो इनकम वाले परिवार है, उनमें ज्यादातर लोगों में कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशंस की समस्या देखी जाती है, तो यदि हम पोषण युक्त बागवानी करें तो इस समस्या को कम करने में कैसे मददगार हो सकती है?
0: ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा अगर हम न्यूट्रिशन किचन गार्डन एक जो विलेज है जो कम आय वाले हैं उनके लिए यूज करें, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड हैं, अगर हम उसका सेवन करते हैं अच्छे से तो वो हमारे बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, मीन्स कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर फार्मर्स जो है अपने खेती में न्यूट्रिशन किचन गार्डन का यूज कर रहा है, उस तरह से जो एक ऑब्जेक्टिव उसका है किचन गार्डन का किस तरह से लगाना है उसका यूज कर रहे हैं प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, तो वो निश्चित तौर पे कुपोषित नहीं होंगे और माल नरिश नहीं होंगे, वो अच्छा नरिशमेंट होगा उनका और हेल्दी रहेंगे और जल्दी उनको कोई बीमारी नहीं होगी।
1: जी बहुत धन्यवाद मैम। हाँ, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि अगला जो वार्तालाप है मिस तेंजिन छुटुन जी जारी रखें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैम जो किचन गार्डनिंग यानी पोषण वाटिका की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन समय तथा जो जानकारी के अभाव के कारण वो लोग इसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति पोषण वाटिका यानी किचन गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं वो कैसे कर सकती है, यानी उन्हें किन किन बुनियादी चीजें यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होंगी?
0: न्यूट्रिशन किचन गार्डनिंग करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगना है उसमें, बहुत बेसिक आपके ही जो सराउंडिंग एरिया मीन्स कि जो आपका घर है उसके चारों तरफ जो आपके पास खाली जमीन है उसी का यूज करके उसी को प्रॉपर बना के और उसमें जो बेड तैयार करेंगे उसमें बस ये चीज़ों

0: ध्यान रखना है कि एक ही तरह के वेजिटेबल्स नहीं लगाने हैं, उसमें हर बेड में अलग अलग, मीन्स कि जो आप 7 डेज, एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो 7 डेज में जो आप एक 7 बेड जो तैयार कर रहे हैं, तो हर बेड में हर तरह के वेजिटेबल्स होने चाहिए। कुछ जमीन के नीचे निकलने वाली सब्जियां हैं, कुछ क्रीपर्स हैं जो पेड़ के ऊपर होने वाले हैं, कुछ जो है आपके लटकने वाले हैं वेजिटेबल्स। तो इस तरह से हर तरीके का ये वेजिटेबल्स जो यूज करेंगे, तब जाके वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा, और इस तरह का यूज करना चाहिए।
1: जी धन्यवाद मैम। तो मैम ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनके पास मैम जमीन की जो कमी होती है मैम, जैसे कुछ लोग फ्लैट्स में रहती है, तो मैम क्या वो जो है गमलों या फिर छत में पोषण वाटिका कर सकती है?
0: हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो पोर्च है या जो उनके पास ओपन एरिया है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसमें वो पॉट्स जो है थोड़ा चौड़े शेप के वो लेके उसमें जो है उगा सकते हैं।
1: जी तो मैम जैसे हमारे तवांग के क्षेत्र में अलग अलग मौसम में भी अलग अलग किस्म के फल या सब्जियां उगाते हैं, तो

0: हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो पोर्च है या जो उनके पास ओपन एरिया है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसमें वो पॉट्स जो है थोड़ा चौड़े शेप के वो लेके उसमें जो है उगा सकते हैं।
1: जी तो मैम, जैसे हमारे तवांग के क्षेत्र में अलग अलग मौसम में भी अलग अलग किस्म के फल या सब्जियां उगाते हैं, तो मैम एक पोषण वाटिका में ऐसी कौन कौन सी मौसमी सब्जियां, फल या औषधीय पौधे हैं जिन्हें उगाना उपयुक्त होगा मैम?
0: अगर आप तवांग के बारे में बात करना चाहेंगी तो मैं उसके बारे में आपको विशेष करके बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे विलेज में जाके विजिट किया है, देखा है, तो उसमें फार्मर्स क्या करते हैं कि कोई एक वेजिटेबल्स मीन्स कि अगर कहीं पे रेडिश लगा रहे हैं तो केवल रेडिश लगा रहे हैं उनके पूरे किचन गार्डन में, चिली तो चिली ही पूरा लगाया जा रहा है, फिर आपका ये लाई पत्ता है तो केवल लाई पत्ता लगाया जा रहा है। तो मैं उनको अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर वो कोई भी लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लगाना चाहें तो उसमें आप सरसों का पत्ता भी लगाइए, पालक भी लगाइए, इस तरह का मिक्स करके अगर लगाएंगे, लेट्यूज लगाइए, इस तरह के मिक्स करके लगाने से आपकी बॉडी में पोषक तत्व जो लीफी वेजिटेबल्स से मिलेगा या जमीन के नीचे वाली सब्जियों से मिलेगा जो लटकने वाली, वो तब जाके आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो कोशिश करिए केवल एक तरह के वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डन में मत लगाइए, वो फिर आपका न्यूट्रिशनल किचन गार्डन नहीं होगा।
1: जी धन्यवाद मैम। जब कोई जो है मैम किचन गार्डनिंग करते हैं यानी पोषण वाटिका करते हैं, तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अपने पोषण वाटिका में रासायनिक खाद या कीटनाशक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर लेते हैं जो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होते, तो मैम इसके अलावा ऐसे कौन से प्राकृतिक और कम लागत वाले विकल्प हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो?
0: सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना भी तरह का न्यूट्रिशन किचन गार्डन है उसमें केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं करना है
1: जी।
0: वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब वो न्यूट्रिशनल कहाँ रह गया? ठीक है, तो आप न्यूट्रिशनल किचन गार्डन की अगर बात कर रहे हैं तो केवल उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, आपके जो नीम बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो यूज करना है उसके लिए, प्लस आपका वर्मी कंपोस्ट खाद खुद का जो किचन से वेस्ट जो आपका वेजिटेबल्स का फ्रूट्स का निकल रहा है या जो उसका पानी का डायरेक्शन जहाँ पे आप वेजिटेबल्स को वॉश कर रहे हैं या अपने अनाज को धुल रहे हैं, दाल को चावल को बनाने में जो पानी निकल रहा है वो कोशिश करिए कि आपके उसी खेती में जाए जहाँ पे आपने न्यूट्रिशन किचन गार्डन किया है, तो वो आपका हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा और ये आपका नेचुरल फर्टिलाइजर्स रहेंगे।
1: जी जी बहुत धन्यवाद मैम, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपके जो सुझाव है हमारे श्रोताओं के लिए जरूर लाभदायक रही होंगी, तो मैं चाहूंगी कि आगे का वार्तालाप मेरे साथी खंडू पेमा जारी रखे।
2: जी मैम, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि पोषण युक्त बागवानी जो है वो करने से एक महिला को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, उन्हें सशक्त बनाने के लिए कैसे मददगार है?
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, और वुमेन को सशक्त बनाने के लिए इसका बहुत अहम भूमिका है न्यूट्रिशन किचन गार्डन का। सबसे पहले तो वो खुद का हेल्थ उनका बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह की वो हेल्दी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करेंगे और अपनी जो पूरी फैमिली है उसको वो इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो खिलाएंगे उससे बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो भी सरप्लस वेजिटेबल्स है जो मार्केट में ले जाके सेल कर रहे हैं, और प्लस वो एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने आसपास के लिए और लोगों के लिए कि किस तरह से उसने न्यूट्रिशन किचन गार्डन करके प्लांट वे में बना के, प्लांट वे में उगा के सब्जियों को और खुद भी खाया है और फार्मर्स के बीच में ले जाके सेल भी किया है, जो आसपास के एरिया में लोग नहीं जानते होंगे वो भी जानेंगे, उससे उनका चौमुखी विकास होगा।
2: जी जी मैम, हमें बिल्कुल यकीन है कि हमारी जो महिला श्रोताएं हैं वो इस बात से जरूर प्रेरित होंगे, तो इसी के साथ हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण है जहां किसी परिवार या स्वयं सहायता समूह ने इस अवधारणा को सफलतापूर्वक अपनाया हो?
0: अभी यहाँ पे जो एग्जांपल है, अभी न्यूट्रिशन किचन गार्डन पे मैं 1 ईयर से काम कर रही हूँ, जिसमें जो मुझे दिखाई दी है वो यहाँ पे एक है, ये मिसेज नवांग छुजम जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो वेजिटेबल्स है और जो वो ग्रो करते हैं वो अलग अलग है, एक ही तरह की क्रॉप वो नहीं लगाती हैं, नहीं यूज करती हैं, और मैडम का FPC है खुद का, वो उसकी फाउंडर मेम्बर है, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है फार्मर्स को देखने के लिए, वो वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं।
2: जी मैम, और इसी के साथ हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि

0: जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस के छात्राएं हैं, उन्हें पोषण युक्त बागवानी से कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि उनमें पोषण और प्रकृति के प्रति भी जागृत हो।
1: जहाँ तक न्यूट्रिशन किचन गार्डन की बात आती है तो उनके सिलेबस में एक लेसन होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन किचन गार्डन होना चाहिए। उसके अलावा उनका जो न्यूट्रिशन का कोई अगर चैप्टर होगा तो वो फिर एक ट्रेनिंग उनको दिया जा सकता है, फिर उनको डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू बताया जा सकता है कि किस तरह से न्यूट्रिशन किचन गार्डन क्या है, किस तरह करने से उनको बेनिफिट होगा। और बहुत जरूरी है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गया या एडोलसेंट गर्ल बॉय जो भी हैं, इस एज में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन किचन गार्डन क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइफ में कितना महत्व है, ये अगर उनको आइडिया हो गया तो अपने स्कूल से ये नॉलेज पाके वो अपने घर पे जाके पेरेंट्स को बताएंगे, उसके इम्पोर्टेंस को बताएंगे, तो जाके फिर हेल्दी फैमिली तैयार होगी।
0: जी जी, बहुत धन्यवाद मैम। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आगे की वार्तालाप जो है वो चिल्ड्रन जारी रखें।
2: जी धन्यवाद। तो मैम, जैसे कि आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत है, तो मैम हम जानना चाहेंगे कि क्या पोषण वाटिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से या कृषि विज्ञान केंद्र या किसी अन्य संस्थानों द्वारा कोई योजना या ट्रेनिंग दी जाती है, यानी किसी प्रकार की सहायता, अगर हाँ तो वो आम जनता यानी आम लोगों तक कैसे पहुँचती है?
1: बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, मे बी और भी लाभ इससे उठाएंगे फार्मर्स हमारे। जो हमारा केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें मैं जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन कम्युनिटी साइंस हूँ, इसमें है कि मेरा जो ऑन फार्म ट्रायल है वो न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पे है। इसमें हम फार्मर्स को सेलेक्ट करते हैं और पहले फार्मर्स को थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल सीड, जो सीजनल वेजिटेबल सीड है, वो उपलब्ध कराते हैं, देते हैं, और फार्मर्स को बताते हैं किस तरह से आप लाइन स्विंग करिए, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रो टू रो कितना होना चाहिए, वो फार्मर्स को देके और फिर उनको उन वेजिटेबल्स का नॉलेज भी देते हैं कि ये खाने से उनको हेल्थ में क्या सुधार होंगे, कैसे उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से ये कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रहा है और उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वेजिटेबल सीड प्रोवाइड करता है सीजनल, और फिर उनको लगाने के तरीके बताता है, सोइंग करने के तरीके बताता है, कैसे प्लांट का ये नर्सरी करना है, कितने दिन पे उसको ट्रांसप्लांट करना है, ये सारी चीजें बताते हुए, और मिक्स क्रॉपिंग करना है, ये सारी चीजें उनको बताता है कि हम लोग का जो संस्था है, और उनको थोड़े अमाउंट में वेजिटेबल सीड भी प्रोवाइड करता है।
2: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये बातें हमारे श्रोताओं के लिए जरूर जानकारीदायक रही होंगी। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर पहुंचे हैं। तो अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को संदेश दें ताकि वे इस पोषण वाटिका को अपनाएं और अपने घर को हरा भरा व पोषक बनाएं।
1: मेरे तरफ से तमंग वासियों को यही संदेश है कि आप जितना हो सके सबके सब न्यूट्रिशनल किचन गार्डन, जो अपने आसपास के सराउंडिंग जो खाली एरिया है उसमें किचन गार्डन तो सबको ही करता है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में आपको कैसे करना है वो चीज बातों का ध्यान रखें। कोई भी प्लांट लगाते वक्त वो प्लांट हमारे लिए कितना हेल्दी होगा इस बात का बहुत ध्यान रखें। सीजनल वेजिटेबल्स लगाएं और कोशिश करें नया जो वेराइटी आ रही है, नया जो सीड आ रहा है या जो कोई नया वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको लगाने की कोशिश करें और हर तरह का वेजिटेबल्स लगाएं। मेरा यही कहना है उनसे, केवल एक तरह का वेजिटेबल्स लगा के वही खाने से उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें तो वो हेल्दी रहेंगे।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिव्या जी, आपने किचन गार्डनिंग के बारे में बेहद सरल, व्यावहारिक और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपकी बातों से हमें यह समझने को मिला कि किचन गार्डन सिर्फ पौधे उगाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली, आत्मनिर्भर और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका बहुमूल्य समय देने और इतनी सहजता से ज्ञान बांटने के लिए हम आकाशवाणी तवंग की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि आज का यह संवाद हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेगा और वे भी अपने घरों में किचन गार्डन की शुरुआत करेंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: थैंक यू सो मच।
3: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के वरिष्ठ

विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्य पांडे के साथ पोषण वाटिका यानी न्यूट्रिशनल किचन गार्डन पर हुई एक भेंटवार्ता। इसी के साथ ही हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:30 हो रहे हैं। श्रोताओं अब पेश है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का पहला गीत सुनते हैं, रेफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

अगला गीत सुनते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मीनाक्षी मजूमदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर जोर दिया कि देश के संरचनात्मक कमजोरियों के बावजूद भारत ने दुनिया भर में मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जबरदस्त स्थिरता दिखाई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन का लिखा एक लेख शेयर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि एक दशक से माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने और साथ ही नीति निर्माण को तेजी से बदलने और लचीला बनाए रखने का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। रविवार को हुई भारी और लगातार बारिश से ईस्ट सियांग, लेपाड़ादा और लोअर सियांग जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ईस्ट सियांग जिले के लीदुम इलाके में बाढ़ के पानी से कम 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। लोअर सियांग जिले में सीजी और मेरी के बीच लिकावाली चेक पोस्ट के पास सीजी नदी में भारी भूस्खलन के कारण नदी का बहाव रुक गया, जिससे ऊपरी इलाकों में पानी जमा हो गया है। संबंधित अधिकारियों ने निचले इलाकों में जान माल के संभावित खतरों की चेतावनी दी है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सतर्क करने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। लेपाड़ादा जिले में लगातार भारी बारिश के कारण कीरी नदी के क्षेत्र और बासर व सागो सर्गल की आसपास की गांवों की खेतों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। लंबे समय तक पानी भरे रहने के कारण खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बासार में कामदक के पास और सागोसारी सड़क मार्ग पर भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क भी बाधित हुआ है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ईटानगर ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 5 दिनों के जिलावार मौसम चेतावनी जारी की है। इसमें 27 जून से 1 जुलाई के बीच कई जिलों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। राज्यसभा सांसद ताई तगाक ने कई पेनियर जिले के पास पोसा में हाल ही में आई अचानक बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद और पुनर्वास के लिए 7 लाख रुपए का योगदान दिया है। प्रभावित परिवारों के लिए चल रहे बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद के लिए यह आर्थिक सहायता नादा बुरा और ताई तरुण ने उनकी ओर से सब डिविजनल ऑफिसर ताजिंग पादुंग को सौंपी। श्री तगाक ने इस आपदा में जान गंवाने वालों पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने बचाव और राहत कार्य में लगे जिला प्रशासन, राज्य पुलिस, भारतीय वायुसेना, SDRF कर्मियों, NGO स्वयंसेविकों और स्थानीय निवासियों के प्रयासों का भी सराहना की। कल खेती इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान NSCN के गुट के 2 सदस्यों ने असम राइफल्स और तिराव पुलिस के सामने स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया। ये ऑपरेशन असम राइफल्स की खोंसा बटालियन ने इलाके में विद्रोही सदस्यों की मौजूदगी के बारे में मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया था। ऑपरेशन के दौरान दोनों विद्रोहियों ने स्वेच्छा से अपने हथियार डाल दिए और सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। कल निमास इलाके और केंद्रीय विद्यालय KV धीरांग के पास

लता मंगेशकर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8 बजे है। श्रोताओं और पेशे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत सुनिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद फिल्मी नगमे। आज इस कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है चंडीगढ़ के सतीश अनेजा और बिमला अनेजा से। इन्होंने फरमाइश किया है काला सोना फिल्म से आया गीत डैनी डेंजोंपा और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है पैगंग लो के पेमटशी तिनजिन दवा सिटी म्यांगचिन दोरजी और नाकुसेई। इन्होंने फरमाइश किया है प्यार की कागज पे फिल्म से, माफ कीजिए, जिगर फिल्म से आया गीत अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए कुछ फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर, जो हमें प्राप्त हुआ है दत्तरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा से। इन्होंने फरमाइश किया है दिल फिल्म से यह गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है रिग्नी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा से, और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह से। इन्होंने फरमाइश किया है नगीना फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत का नाम और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसी यादों, कुछ और नगमों के साथ।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8:30 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ 8। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में ब्राजील का सामना जापान से, वहीं देर रात जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई किया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के उप विजेता रहे। FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कांस्य पदक विजेता पुरुष वॉलीबॉल भारतीय टीम को सम्मानित किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। वहीं कनाडा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार विश्व कप के अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: पहले नॉकआउट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका शुरुआत से ही कनाडा पर हावी नजर आई और लगातार आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए दबाव बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कुछ अच्छे मूव जरूर देखने को मिले, लेकिन टीम इन्हें गोल में तब्दील नहीं कर सकी।
2: मिक्सचर ऑफ मैन टू मैन एंड ज़ोनल मार्किंग हियर फ्रॉम द साउथ अफ्रीकंस। दे हैड इट डाउन एंड ऑलमोस्ट इन। Good follow-up save from Williams. It was a combination of maybe goalkeeper and defender on the line.
1: दूसरी ओर कनाडा को पहले हाफ के अंतिम मिनटों में गोल करने के 2 बढ़िया मौके मिले, लेकिन टीम इन मौकों को भुनाने में असफल रही। मोइस बॉम्बिटो के शानदार हेडर को दक्षिण अफ्रीका के डिफेंडर ऑब्रे मोडिबा ने गोल लाइन के पास से क्लियर किया, जबकि ताजोन बुकानन के बेहतरीन शॉट का गोलकीपर रोनविन विलियम्स सफलतापूर्वक बचाव करने में सफल रहे।
2: Now Canada, can they find a route to goal now? And it's going to drop, surely no, brilliant defending, absolutely outstanding defending.
1: पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो पाया। दूसरे हाफ में दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले कनाडा की टीम ज्यादा आक्रामक अंदाज में खेलती हुई नजर आई। टीम ने दक्षिण अफ्रीका के गोल पर एक के बाद एक हमले किए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के मजबूत डिफेंस ने कनाडा की एक नहीं चलने दी। मैच के 75वें मिनट में कनाडा की ओर से स्टार खिलाड़ी अल्फोंजो डेविस मैदान पर आए। डेविस ने मैदान पर आते ही अपनी रफ्तार और बेहतरीन ड्रिब्लिंग के दम पर विपक्षी टीम के डिफेंस पर दबाव बना दिया। रोमांचक मुकाबलों के अंतिम मिनटों में कनाडा के कप्तान स्टीफन यूस्टाक्वियो ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाते हुए निर्णायक विजयी गोल किया। इस जीत के साथ ही कनाडा ने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है।
2: This is dropping nicely. Estequio! Steven Estequio! And it is elimination for Bafana Bafana. But Canada in uncharted waters are sailing into the last 16.
1: कनाडा की जीत के साथ ही इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का सफर अब समाप्त हो गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन की कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में 1 घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू ली यांग से 15-21, 21-16, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं फाइनल मुकाबले का हाल।
3: विश्व रैंकिंग में 38वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। सत्र का अपना पहला फाइनल खेल रहे श्रीकांत की गलतियों का फायदा उठाकर यांग ने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की और 7-2 की बढ़त बना ली। श्रीकांत ने वापसी करते हुए अगले 11 में से 8 पॉइंट जीते और स्कोर 10-10 से बराबर कर दिया। हालांकि ब्रेक के बाद चीनी ताइपे के शटलर ने वापसी करते हुए 17-12 से बढ़त बना ली। यांग

0: के बाद 6 गेम पॉइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों ने एक पॉइंट बचाया लेकिन फिर शटल को बाहर मार दिया, जिससे यांग ने 17 मिनट में पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में श्रीकांत ने लगातार 3 पॉइंट जीतकर 7-4 की बढ़त बना ली, लेकिन चीनी ताइपे शटलर ने जल्द ही 8-8 से बराबरी कर ली। श्रीकांत ने एक शानदार बैकहैंड क्रॉस कोर्ट नेट शॉट से 10-8 की बढ़त बनाई। उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए उसे 18-13 कर दिया और फिर 7 गेम पॉइंट हासिल कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में यांग ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 4-1 की बढ़त हासिल कर ली। श्रीकांत ने इस बीच गलतियां की, जबकि चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने अपना आक्रामक खेल जारी रखते हुए बढ़त को 15-7 तक पहुंचा दिया। श्रीकांत के एक और वाइड रिटर्न के बाद यांग ने 12 मैच पॉइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों ने एक पॉइंट बचाया लेकिन वो अपना संघर्ष जारी नहीं रख पाए और श्रीकांत के प्रतिद्वंदी ने अपने करियर का पहला BWF विश्व टूर खिताब जीत लिया। मैच के बाद श्रीकांत ने इस मुकाबले का अनुभव साझा किया। श्रीकांत ने पिछले वर्ष मलेशिया मास्टर सुपर 500 और सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में भी दूसरा स्थान हासिल किया था। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत का अभियान आज क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से 1-2 से मिली हार के साथ समाप्त हो गया। और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी प्रो लीग के अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। निर्धारित 60 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद मैच का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया। संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: मैच की शुरुआत इंग्लैंड ने आक्रामक अंदाज में की। पहले ही क्वार्टर में मेजबान टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित शशि कुमार ने शानदार बचाव करते हुए टीम को शुरुआती झटके से बचा लिया। भारत की ओर से पहले क्वार्टर में सबसे अच्छा मौका अभिषेक को मिला, लेकिन वो भी इसे गोल में तब्दील करने में नाकाम रहे। दूसरे क्वार्टर में जर्मनप्रीत सिंह ने शानदार शॉट लगाते हुए गोल करने का प्रयास किया, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने बचाव करते हुए भारत को बढ़त लेने से रोक दिया। हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने अधिक आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन गोल करने में असफल रही। तीसरे क्वार्टर में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने एक बार फिर शानदार बचाव किया। चौथे और अंतिम क्वार्टर में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा दम लगा दिया, लेकिन कोई भी टीम गोल न कर सकी। इसके बाद मैच का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया, जहां भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी। भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल किए, जबकि भारतीय डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया। संजय ने डिफेंस में अपने खेल से टीम को जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मोहित शशि कुमार और सूरज करकेरा दोनों गोलकीपरों ने अहम मौकों पर बेहतरीन बचाव और टीम को जीत दिलाई। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात वॉलीबॉल पर। पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने कल ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ भारत FIVB विश्व रैंकिंग में 42वें पायदान पर पहुंच गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को सम्मानित किया। श्री मांडविया ने कहा कि भारतीय खेल जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक है। सरकार ने प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और एथलीट सपोर्ट सिस्टम के लिए जो इंतजाम किए हैं और उनकी योजना बनाई जा रही है, वो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। कप्तान जेरोम विनित चार्ल्स की अगुवाई और सर्बिया के ड्रैगन मिहाइलोविच की कोचिंग वाली भारतीय टीम ने कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारत पुल स्टेज में अजय रहा और कांस्य पदक प्लेऑफ में बहरीन को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार पोडियम में जगह बनाई। और अब बात एथलेटिक्स पर। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुई 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में रोहित यादव ने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही रोहित ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।
3: रोहित इस सीजन में भारत की ओर से सबसे लंबी दूर का थ्रो फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वो श्रीलंका के रमेश अथरंगा पथिरगे के 92.62 मीटर के बाद दुनिया के टॉप थ्रोअर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस सूची में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं।

0: इस प्रतियोगिता में रोहित ने न सिर्फ अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि मीट रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन किया, जो पहले 84.35 मीटर था। रोहित यादव ने 5 थ्रो किए लेकिन पांचवा और अंतिम प्रयास सबसे शानदार रहा। उन्होंने 87.05 मीटर का थ्रो कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं लॉन्ग जंप स्पर्धा में केरल के मुरली श्री शंकर एम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 8.38 मीटर की दूरी तय की। खास बात ये रही कि उनकी सभी वैध छलांगे 8 मीटर से अधिक रहीं। श्री शंकर ने कहा कि यह मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी था, जिससे उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा मिली।
1: I feel that is a magnificent feat. Indian athletics ke history mein we can kind of write it down that this 2026 year 4 long jumpers have jumped above 820 in this one season. So that shows the depth of long jump in India and really happy to contribute to that part. I also have a wild stat I was just counting. This was my 60th jump above 8 meters in just competitions like all together. We hope to continue that moment.
0: इसी प्रतियोगिता के अलग अलग स्पर्धाओं में एथलीटों में शानदार प्रदर्शन कर एशियन गेम्स का टिकट पक्का कर लिया। पुरुष वर्ग में विशाल टीके, मनु टीएस, अभिषेक पाल, बालकिशन, सचिन यादव और श्री शंकर एम शामिल रहे। वहीं महिला वर्ग में प्राची, सीमा, अंकिता और पूजा ने भी क्वालिफाई किया। रुबीना अजीज, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात एशियाई युवा टेबल टेनिस पर। बैंकॉक में आयोजित एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत की अंडर 19 लड़कों की टीम ने हांगकांग को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ टीम ने कांस्य पदक और अगले वर्ष की विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जगह पक्की कर ली है। अब सेमीफाइनल में भारतीय लड़कों का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन से होगा। हालांकि भारतीय अंडर 19 लड़कियों की टीम क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से 1-3 से हारकर पदक राउंड तक नहीं पहुंच पाई। बात क्रिकेट पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। हालांकि पुरुष टीम को सीधे क्वालिफाई करने के लिए इस वर्ष के अंत तक आईसीसी T20 रैंकिंग में एशिया के सर्वोच्च स्थान हासिल करना होगा। और अब बात T20 विश्व कप पर। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6-विकेट से हराया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर रहते 4-विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। एलिस पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इस बीच कल बेलफास्ट में ही आयरलैंड ने दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 153 रन ही बना सकी। जय मुंद्रा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। हालांकि भारत का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन आज ही के दिन भारत ने 2 वर्ष पहले 2024 में T20 विश्व कप रोहित शर्मा की अगुवाई में जीता था। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।
3: एक आखिरी मौका हार्दिक पांड्या, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच। It's in the air, it's India who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. An ICC tournament after 13 and they become the unbeaten team to hold the trophy. 50th win for Rohit Sharma as captain in T20s and the first captain to do so.
4: Congratulations to India, led by Rohit Sharma. ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024.
5: Since the time we have come to India, it's been wonderful. The reception we have got here tells you the kind of enthusiasm, the kind of waiting that people had. So this trophy, yes, of course, it means so much to us, but it is for the entire nation.
2: वहीं इस बीच विमंडल टूर्नामेंट में यानिक सिनर का मुकाबला म्योमीर कैकमनोविच से जारी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे कल फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज

0: सकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक

0: गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में

0: दी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधे उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रूपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज 8 आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं। चलिए श्रोता, अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात साप्ताहिक मुनपा कार्यक्रम, दैनिक समा कल शाम 5:35 पर और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत कल शाम 8:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रम की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2:00 अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री सांगे सोमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री लामसरिंग, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास के साथ मैं हूं हिंदी उद्घोषिका सांगे लामू। समय रात के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दे, शुभरात्रि, जय हिंद।